टूनी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है, इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

वतीं सकल भाग्यवतीं उपेक्षा वार्तिं वधू गृहमतीत्य भवान् समेत्य क्षेत्रे त्रवासर्मरोचयनाय किंतत् उत्तिष्ठ कृष्ण भगवन्तव सुप्रभातम् निर्मध्य भीकर भवानवमाशु जैवम्।

0: वेणु धोनी 90.4 एफएम केएलई गनसू पे आप ट्यून है और अभी हम सुनेंगे ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से प्रस्तुत होने वाले न्यूज।
1: से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में हैं। सहयोगियों के समर्थन के साथ साथ टीवी के सरकार को अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK से अलग हुए गुट का समर्थन प्राप्त है। इस बीच तमिलनाडु में AIADMK सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बंट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडपाड़ी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वरिष्ठ नेता एग्री कृष्ण मूर्ति ने चेतावनी दी है कि पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने वाले किसी भी विधायक को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने SP वेलुमणि को AIADMK विधायक दल का नेता चुना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जसपाल कौर।
2: वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने राज्य सरकार में IAS अधिकारियों का तबादला किया है, जिनमें पूर्व मुख्य सचिव N मुरुगंदम और वित्त सचिव T उदय चंद्रन शामिल हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में ज्योतिषी रिकी राधान पंडित को विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त किए जाने पर गठबंधन सहयोग ने कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल और ज्योतिमणि ने इस नियुक्ति पर सवाल उठाए, जबकि CPIM के राज्य सचिव P शुनगुमुगम ने कहा है कि कदम सरकार के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के खिलाफ है। अखिल भारतीय NR कांग्रेस के नेता N रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: पुदुचेरी में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। N रंगासामी एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 76 वर्षीय N रंगासामी का मुख्यमंत्री के रूप में यह 5वां कार्यकाल होगा। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा पुदुचेरी प्रभारी निर्मल कुमार सुराना और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष VP रामलिंगम सहित कई प्रमुख नेताओं के शामिल होने की संभावना है। इससे पहले श्री नितिन नवीन ने पार्टी मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और विधायकों के साथ बैठक की। पुदुचेरी से विपिन S नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
2: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने कथित नीट पेपर लीक मामले में शुभम खैरनार को हिरासत में ले लिया है। राजस्थान पुलिस के अनुरोध पर नासिक पुलिस ने कल महाराष्ट्र के नासिक से शुभम को हिरासत में लिया था। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट UG परीक्षा कल पेपर लीक के आरोपों के बीच रद्द कर दी गई। नीट UG के एक उम्मीदवार के अभिभावक ने लातूर SP कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है और आरोप लगाया है कि एक निजी कोचिंग संस्थान ने परीक्षा से पहले एक मॉक टेस्ट आयोजित किया था, जिसमें कथित तौर पर 42 प्रश्न नीट परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों से मेल खाते थे। इससे पहले राजस्थान पुलिस के विशेष जांच दल ने संदिग्ध नेटवर्क और धन के लेनदेन की जांच के दौरान 15 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने कल जयपुर से कथित मास्टरमाइंड मनीष को भी गिरफ्तार किया। इसी महीने की 7 तारीख को सीकर के करियर काउंसलर राकेश कुमार समेत 5 लोगों को देहरादून से गिरफ्तार किया गया था और अगले दिन 4 नीट उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया। इस बीच राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर राज्य भर के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: So
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मितव्ययिता के आह्वान पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया और साप्ताहिक वाहन मुक्त दिवस को प्रोत्साहित किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने और सोने की अनावश्यक खरीद से बचने का आग्रह किया। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री और अन्य लोगों के वाहनों के बेड़े को तत्काल 50% तक कम करने का निर्देश दिया। उन्होंने आधिकारिक काफिलों से अनावश्यक वाहनों को हटाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य में घर से काम करने की संस्कृति को प्राथमिकता देने की भी अपील की। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो सेवाओं और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों के उपयोग पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों को सप्ताह में कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। सप्ताह में एक बार वाहन निषेध दिवस यानी नो व्हीकल डे का भी आयोजन किया जाना चाहिए। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
2: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। मुख्यमंत्री के काफिले में अब केवल 8 वाहन होंगे और कोई भी वाहन रैली आयोजित नहीं की जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कहा है कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कार पूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो और बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इसके अलावा अनुपालन मानदंडों की पूर्ति के अंतर्गत कीमती धातु के प्रयुक्त उत्प्रेरक पर 4.35% आयात शुल्क निर्धारित किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के चलते लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। सरकार द्वारा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के वार्षिक और चौथी तिमाही के अनुमानों की प्रकाशन तिथि को संशोधित करते हुए प्रत्येक वर्ष मई के अंतिम कार्य दिवस से बदलकर 7 जून कर दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये संशोधन आंकड़ों की गुणवत्ता को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसद का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान की यात्रा पर जाएगा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और भूटान के संबंधों को और मजबूत करना है। यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल भूटान और भारत के बीच संबंधों के विभिन्न पहलुओं तथा दोनों पड़ोसी देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेगा। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन की ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी पेकिंग पहुंचेंगे। वे चीन की 3 दिन की यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि व्यापार इस वार्ता का प्रमुख विषय रहेगा। युगांडा के राष्ट्रपति यूवेरी मुसवेनी ने जनवरी में हुए चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद अपने 7वें कार्यकाल की शपथ ली। राष्ट्रपति मुसवेनी पिछले 40 साल से राष्ट्रपति पद पर हैं। श्री मुसवेनी ने कल युगांडा की राजधानी कंपाला के कोलोलो इंडिपेंडेंस ग्राउंड्स में आयोजित समारोह में हजारों लोगों के बीच पद की शपथ ली। श्री मुसवेनी ने 71% से अधिक वोट हासिल किए। भारत में इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन इस सप्ताह हो सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मानसून आ सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र कल भी इसी क्षेत्र में था और इससे संबंधित चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 4.5 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ था। इस बीच राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
7: मौसम केंद्र ने सीमावर्ती बाड़मेर, जैसलमेर और फलोदी जिलों के लिए आज भीषण गर्मी और लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 4 पश्चिमी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 6 दक्षिणी पूर्वी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिन के साथ रातें भी तप रही हैं और कई स्थानों पर रात का पारा 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा जा रहा है। गर्मी की इन परिस्थितियों से जनजीवन पर खासा असर हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिन तापमान के यही हालात रहने के आसार हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
2: महाराष्ट्र के सांगली जिले की जाट तहसील में कल एक धार्मिक सभा के दौरान दीवार गिरने से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 15 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। जम्मू कश्मीर में सेना के कल पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास कृष्णा घाटी सेक्टर में एक आतंकवादी को मार गिराया गया। हमारे संवाददाता के अनुसार सेना को मिली सूचनाओं के बाद शाम करीब 4 बजे नियंत्रण रेखा के अंदर संदिग्ध गतिविधि देखी गई। इस पर सैनिकों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। खेलों में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं उज्बेकिस्तान में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में फोगाट ने कोरिया के सेंगुमिन ली को पराजित किया। वहीं 8 भारतीय लड़कियों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए फाइनल में जगह बनाई और 4 ने कांस्य पदक जीते। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
8: धन्यवाद फरहत। नीट यूजी 2026 की परीक्षा निरस्त करने का समाचार आज सभी अखबारों की सुर्खी बनी है। अमर उजाला लिखता है सीबीआई को पेपर लीक की जांच, एक गिरफ्तार, 20 संदिग्ध हिरासत में। दैनिक भास्कर की खबर है 22 लाख अभ्यर्थियों से खिलवाड़, परीक्षा दोबारा होगी, नई तारीखों की घोषणा जल्द। कल से ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की समिट, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। पत्र लिखता है पीएम से भी संयुक्त मुलाकात, खाड़ी संकट के बीच दिल्ली पर दुनिया की निगाहें। तमिलनाडु में अन्ना द्रमुक के 30 विधायकों का टीवीके को समर्थन का ऐलान, विजय आज बहुमत साबित करेंगे, जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। अमर उजाला ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है नया भारत और बदलती सियासी समझ, संपादक का कहना है कि हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे बताते हैं कि देश का मिजाज अब राजनीति में किसी तरह की संकीर्णता को बर्दाश्त नहीं करेगा। कोलकाता से लेकर चेन्नई और तिरुवनंतपुरम तक नए की उम्मीद और पुराने के प्रति गुस्से के चलते मौजूदा व्यवस्था बहती दिखी। दैनिक जागरण ने पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के शब्द प्रकाशित किए हैं, पेट्रोल उत्पादों की दिक्कत नहीं लेकिन कंपनियों का घाटा चिंताजनक। शेयर मार्केट में निवेशकों के 9 लाख करोड़ स्वाहा, आखिरी घंटे और बढ़ी गिरावट, सेंसेक्स 1500 पॉइंट टूटने से मचा हाहाकार। लोकसत्य ने कारोबार पन्ने पर यह खबर प्रकाशित की है। जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस बनी लोगों की पहली पसंद, 10 दिनों में करीब 45,000 यात्रियों ने किया सफर, देश बंधु की खबर है। नवभारत टाइम्स ने जनगणना 2027 पर खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है अब QR कोड से जनगणना कर्मियों की होगी पहचान, फर्जी मैसेजेस को लेकर किया फैसला, मेहनत के बिना जवाब, चैटबॉट खत्म कर रहा रचनात्मकता, राजस्थान पत्रिका ने डिजिटल एडिक्शन शीर्षक से खबर प्रकाशित की है।
2: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवीके सरकार का बहुमत परीक्षण आज। अखिल भारतीय NR कांग्रेस प्रमुख एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। मौसम विभाग का अनुमान, समय से पहले दस्तक देगा मानसून। और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: और अब तक हम सुन रहे थे ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से प्रस्तुत होने वाले न्यूज। आप सुनते रहे वेणु धोनी 90.4 FM KLE कनसु।
9: ಬೆಳಗಾವಿಯ ಕೆಎಲ್ಇ ಆಯುರ್ವೇದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದೆ.
10: ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಲು ಅವಶ್ಯವಾದ ನುರಿತ ತಜ್ಞರಿಂದ ತಪಾಸಣೆ, ಹೊರ ಹಾಗೂ ಒಳರೋಗಿ ವಿಭಾಗ ಅನುಭವಿ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಹೊಂದಿದೆ.
9: ಕೆಎಲ್ಇ ಆಯುರ್ವೇದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮುಖ್ಯ ಧ್ಯೇಯ ರೋಗ ನಿವಾರಣೆ, ಆರೋಗ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ.
10: ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
9: ಕೆಎಲ್ಇ ಆಯುರ್ವೇದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಶಹಾಪುರ, ಬೆಳಗಾವಿ. ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 0831-24-86-286.
11: केली कैंसर हॉस्पिटल नेहरू नगर बेळगाव.
12: कैंसर कोणत्याही प्रकारचा असो अत्याधुनिक उपचार एकाच छताखाली भेटतील.
11: प्रथमच उत्तर कर्नाटकामध्ये बेळगाव येथे तज्ञ आणि अनुभवी डॉक्टर, अत्याधुनिक टेक्नॉलॉजी सहित सुसज्ज हॉस्पिटल केली कैंसर हॉस्पिटल.
12: केलीज डॉक्टर प्रभाकर कोरे हॉस्पिटल आणि MRC च्या पाठीमागे नेहरू नगर बेळगाव येथे.
11: तुमच्या आरोग्यासाठी नवीन आशेचे किरण केली कैंसर हॉस्पिटल.
12: मिळणाऱ्या सुविधा हायली स्किल्ड डॉक्टर्स टीम, केमोथेरपी, हेमटो ऑन्कॉलॉजी, बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट,
11: रोबोटिक सर्जरी, पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी, ऍडव्हान्स रेडिओथेरपी आणि यासोबत सर्व प्रकारच्या कॅन्सर वरती उपचार.
12: आमचा पत्ता केलीज डॉक्टर प्रभाकर कोरे हॉस्पिटल आणि MRC च्या पाठीमागे केली कॅन्सर हॉस्पिटल, नेहरू नगर, बेळगाव येथे.
11: फोन नंबर 0831-255-2500 आणि 247-3777.
12: मोबाईल नंबर 6360-712-326 किंवा टोल फ्री नंबर 1099.
11: आजच भेट द्या केली कॅन्सर हॉस्पिटल, बेळगाव येथे.

माँ बनने में हो रही है देर, इंतजार है खुशखबरी का। देयर इज वन नेम यू कैन ट्रस्ट, केली फर्टिलिटी सेंटर विद साइंस, सोल एंड सेंसिटिविटी। जिंदगी को दो नई शुरुआत केली IVF के साथ। आज ही विजिट करें केली फर्टिलिटी सेंटर, OPD नंबर 97, शरावती सेकेंड फ्लोर, केलीज डॉक्टर प्रभाकर कोरे हॉस्पिटल एंड MRC बेलगावी। फोन नंबर 08312551530 एंड 247377, एक्सटेंशन 1530।

कैसे दिशा दिखा सकता है। इतने बड़े राजे रजवाड़ों को एक करने का भगीरथ काम, भारत के नेतृत्व का, धरती से जुड़े हुए नेतृत्व का सामर्थ्य हम दुनिया के सामने प्रस्तुत।

0: सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एकता का काम किया था। हिंदुस्तान के हर कोने को जोड़ना है, वो किसान थे इसलिए किसान को जोड़ना है।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं वेणु धोनी 90.4 KLE कनसू। आज के इस विशेष कार्यक्रम में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। कार्यक्रम का नाम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत एक ऐसी नई और प्रभावशाली योजना है जो भारत सरकार द्वारा अभी हाल ही में शुरू की गई है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर 2015 सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस पर इस नई पहल को शुरू करने की घोषणा की थी। इस योजना का उद्देश्य मौजूदा सांस्कृतिक संबंधों के माध्यम से देश के विभिन्न भागों में एकता को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य इन भारतीयों के बीच भी संबंधों को सुधारना है जो पूरे देश में अलग अलग भागों में रह रहे हैं। ये पहल लोगों को लोगों से जोड़ेगी जो वास्तव में भारत में एकता को बढ़ाएगी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आज बात करेंगे शुभोदी बेरा। वो बेसिकली कोलकाता से है और बेलगम में वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी में। तो उनसे मैं आज बातचीत करूंगी और आप लोगों को यहाँ बैठे बैठे कोलकाता की इस सैर करवा के लाऊंगी। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहे और सुनते रहे वेणु धोनी 90.4 के।

0: शुभोदय, आपका हमारे स्टूडियो में दिल से स्वागत है।
1: जी, आपको भी नमस्कार, प्रणाम।
0: मुझे बताया कि कोलकाता बोले तो बहुत सी बातें सामने आती है, तो वो सब हम डिटेल में जानना चाहेंगे कि कैसे है कोलकाता।
1: पहले मैं आपसे एक पूछता हूँ, आप कभी गए हो कोलकाता?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं, हमने तो सिर्फ टीवी में ही देखा है।
1: कोलकाता के बारे में आपको कितना पता है, मतलब किस चीज में आपको ज्यादा ध्यान जाता है, क्रिकेट या फिर और कुछ?
0: धार्मिक स्थल ऐसे बहुत देखने लायक है,
1: बहुत कुछ है। पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, कोलकाता इज ए प्योरली बंगाली भाषा जानते
0: हैं, और बंगाल को अगर सुना जाए तो बंगाली स्वीट्स ही सामने आते
1: हैं। बंगाली स्वीट्स सबसे ज्यादा पहले सामने आते हैं। ऐसे स्वीट्स के अलावा बहुत कुछ मिलेगा आपको, ऐसे खाने के लिए आपको बहुत सस्ता मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट फूड से लेके दोपहर लंच और रात के डिनर सब कुछ आपको सस्ते में मिलेगा। लिविंग स्टेटस बहुत सस्ता है उधर।
0: अच्छा,
1: रहने के लिए वहाँ जो जो बाहर से पढ़ने आते, पढ़ाई के लिए आते, जॉब के लिए आते, कोई भी चीज अगर उनको रहना है, रहने के लिए, खाने के लिए, उनके सैलरी के हिसाब से बहुत सस्ता है उधर। हाँ, मैंने उधर से ग्रेजुएशन किया उधर, तो बहुत सस्ता है। इट्स लिव, आपको एक छोटा सा चाय भी मिलेगा 4 रुपए से लेके।
0: अरे वाह,
1: चाय मिलेगा, बस का भाड़ा मिलेगा मिनिमम 4 रुपए 5 रुपए। मेट्रो सिटी है उधर, अंडरग्राउंड मेट्रो सिटी है, तो दीज आर द ट्रांसपोर्ट सिस्टम। बट हाँ, उधर बहुत आपको ट्रैफिक जैम मिलेगी, ये आपको यू शुड हैव अ पेशेंस, आपको मतलब धैर्य रखना पड़ेगा कि अपने ऊपर। अभी बताया जाए कि धार्मिक शाले बहुत है, दक्षिणेश्वर है, बहुत फेमस है, आपने सुना होगा। एक मूवी भी आई थी उधर शूटिंग हुआ था, बहुत सारी शूटिंग हुआ है, आपने देखे होंगे। दक्षिणेश्वर है, कालीघाट है, बेलूर है, बहुत मिशनरी स्कूल है, मैं खुद मिशनरी स्कूल से आया हूँ।
0: अच्छा,
1: तो बेलूर आपने नाम सुना होगा शायद, बेलूर।
0: हाँ, या फिर बेलूर का नाम सुना है।
1: इंटरनेशनल मिशन है बहुत, तो कोलकाता में बहुत है।
0: अच्छा,
1: उधर मेन फेस्टिवल्स दुर्गा पूजा होता है इन द मंथ ऑफ सितंबर और अक्टूबर।
0: अच्छा शुभोदीप, मैं यहाँ पे आपको रोकूंगी, फेस्टिवल की तरफ हम बढ़ेंगे, पर उसके पहले मुझे जानना है कि मिशनरी स्कूल आपने जो कहा अभी उल्लेख किया, तो वो क्या है?
1: मिशनरी स्कूल मैम उधर है कि उल्लेप मिशन स्कूल, मतलब महाराज जो होते हैं हमारे।
0: अच्छा।
1: जो साधु सन्यासी होते हैं उन लोग ही चलाते हैं।
0: ओके।
1: स्टाफ रहते हैं, उन लोगों का पेमेंट थ्रू आउट गवर्नमेंट होता है, बट दीज आर द ओनर, दे आर द ओनर, साधु जो रहते हैं उन लोग ओनर रहते हैं। मिशन स्कूल है, बच्चे उधर रह के भी, हॉस्टल में रह के भी पढ़ सकते हैं, या फिर कोई लोकलाइट है जा सकते हैं पढ़ने के लिए।
0: अच्छा।
1: तो मैं क्लास 5 स्टैंडर्ड से लेकर 12 स्टैंडर्ड तक उधर ही पढ़ा हूँ। हमारे उधर ऐसे यूनिवर्सिटी के हिसाब से नहीं होता है, क्लास 12 तक स्कूल में ही पढ़ना होता है, आइदर तुम्हारे इंग्लिश मीडियम हो या बंगाली मीडियम। पहले 10 तक स्कूल थे, 11-12 कॉलेज में होते थे, उसके बाद चेंज कर दिए उन लोगों ने, 11-12 कॉलेज के अंदर नहीं रखा, स्कूल के अंदर ही रखा है। तो मैं मिशन स्कूल से हूँ।
0: अच्छा, तो वहाँ पे रहते थे या फिर?
1: नहीं नहीं, मेरे घर के पास ही थे, तो मैं डे टू डे जाता था।
0: अच्छा।
1: मैं अप डाउन करता था।
0: ओके, तो वहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है?
1: मोस्टली देखा जाए तो बंगाली भाषा बोले जाते, तो कोलकाता से नजदीक बिहार है।
0: ओके।
1: तो उधर भी बिहारी भी बहुत रहते, तो इट्स लाइक बंगाली भी चलते है, हिंदी भी चलते है, एज वेल एज इंग्लिश भी चलते है, मोस्टली बंगाली चलता है।
0: और कोलकाता में भी वही भाषा बोली जाती है?
1: जी।
0: ओके, तो मुझे अभी बताया कि आपको यहाँ की बहुत खुशी हुई, ऐसा अगर आपको बंगाली में कहना है तो क्या कहेंगे आप?
1: आमार एखाने एशे खूब भालो लगलो।
0: अच्छा, यानी
1: आमार मीन्स मेरे को।
0: हाँ।
1: एखाने मीन्स हियर, एशे मीन्स कम, भालो मीन्स गुड, लगलो मीन्स आई फील।
0: बहुत अच्छा है, तो आप उधर वही भाषा बोल देते?
1: जी जी, मैं उधर ही बांग्ला भाषा बोलता हूँ।
0: तो बेलगम,
1: आपको पता है कि बंगाली इज द वर्ल्ड स्वीटेस्ट लैंग्वेज, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको मिलेगा कि वर्ल्ड स्वीटेस्ट लैंग्वेज इज बंगाली।
0: अच्छा, तो आपको क्या लगता है, मींस वो इजीली सीखी जा सकती है?
1: जी, मैंने अपने बैचमेट्स जो मैंने जहाँ से यूजी किया है, तो बहुत सारे बाहर से आए थे, आफ्टर फाइनल ईयर्स लोग को थोड़ा थोड़ा टूटा टूटा आ जाता है। जैसे मैं अभी इधर आ गया हूँ, मराठी मुझे समझ में आता है।
0: अच्छा।
1: बट मैं बोल नहीं पाता हूँ, सो मेरे बैचमेट को भी समझ में आता है कि क्या बोलना चाहता है।
0: Okay.
1: अपने वाले क्या बोलना चाहते हैं, तो उनको समझ में आता है, सीख जाएंगे।
0: बढ़िया। तो यहाँ पे आके आपको कितने दिन हो गए?
1: मेरा 1 साल हो गया। इस आज के दिन जो है, मैंने इसी दिन आया था बेलगम में लास्ट ईयर कॉलेज देखने के लिए, तो 1 साल हो गया।
0: अच्छा।
1: मेरे 2 साल के कोर्स है, ऑलरेडी 1 साल चला गया।
0: और 1 साल बचा,
1: और 1 साल
0: तो वापस बैक टू पेवेलियन,
1: बैक टू पेवेलियन जाना ही होगा।
0: शुभोदीप, मुझे बताए कि कोलकाता में और क्या ऐसी खास बातें हैं जो जहाँ पे जाके हम देख सके?
1: देखने के लिए बहुत जगह है, आपको इधर सबसे ज्यादा प्यार मिलेगा।
0: अच्छा।
1: इंसानियत मिलेगी।
0: ओके।
1: घूमने के लिए जगह मिलेगा, खाने के लिए, रहने के लिए सब कुछ मिलेगा। और फेस्टिवल आप अटेंड कर सकते हो, बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग बंगालीज के लिए दुर्गा पूजा होता है, इवन ऑल्सो क्रिश्चियन वी हैव ए चर्च ऑल्सो, मुस्लिम के लिए उन लोगों की मस्जिद भी है. सो इट्स नॉट ओनली, और आपको हमारे हिंदू भाषा ही मिलेंगे, उधर मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन भी है, उन लोगों को भी आपको चर्च में देखने को मिलेगा. बहुत सारी जगह है आपको देखने के लिए. मुस्लिम अंडरग्राउंड मेट्रो मिलेगा आपको देखने के लिए.
0: अच्छा.
1: जो अभी कोलकाता में ही सिर्फ है अंडरग्राउंड मेट्रो, जो माटी के अंदर से जाते है वो.
0: ओके.
1: अभी नया मेट्रो बन रहा है, वो आपका गंगा नदी है उधर, उसके अंदर से बना रहा है उन लोग. अभी चल रहा है.
0: मुझे बताया कि कोलकाता में मीन्स अगर हम गूगल पे सर्च करते हैं कुछ देखने के लिए तो वहाँ पे बहुत सारी चीजें बताई जा सकती होंगी.
1: डेफिनेटली आपको बता
0: पर प्रॉपर आप उधर के हैं तो ऐसे भी चीजें आपको या फिर ऐसे भी ठिकान प्लेसेस आपको पता होंगे जो गूगल पे नहीं मिलेंगे शायद और देखने लायक होंगे, ऐसी कुछ है जगह?
1: ऐसे बोले जाए तो आप अगर कोलकाता जाने के लिए आप 3 एरिया चूज कर सकते हैं, आइदर फ्लाइट, ट्रेन और बाई बस. तो ऐसे बहुत सारे चीज, जैसे मैंने आपको बोला, ऐसा कुछ चीज नहीं है जो आपको गूगल पे नहीं मिलेगा, सभी मिलेगा आपको. ऐसे छोटा छोटा चीज, जैसे हाँ, जब कोई फेस्टिवल होता है कोई भी, मान लो ऐसा नहीं कि किसी हर घर पे या फिर कोई क्लब में फेस्टिवल होता है, बहुत सारे क्लब में फेस्टिवल होता है, तो आपको स्पेसिफिक फेमस एरिया का मिलेगा, बट बाकी बहुत सारे जगह पे भी होता है छोटा छोटा करके, तो आपको वो नहीं मिलेगा गूगल पे. ऐसे बहुत सारे एरिया है.
0: अच्छा, यानी कि सब जो गूगल पे वगैरह इन्फॉर्मेशन है
1: आपको मिलेगा
0: वो सब है. अच्छा, तो आसपास और क्या देखने लायक है?
1: आपको विक्टोरिया मिलेगा, नेशनल लाइब्रेरी मिलेगा, नेशनल म्यूजियम मिलेगा, और आपको एक बड़ा सा मार्केट, मतलब फेमस मार्केट है उधर, सब कुछ सस्ते में मिलता है. एस्प्लेनेड बोल के एक जगह है जिधर आपको मार्केट मिलता है, 24 आवर्स चलता है वो.
0: अच्छा.
1: इवन आपको पार्क स्ट्रीट एक जगह है जिसमें हम लोग क्रिसमस या फिर न्यू ईयर पार्टी करते हैं, तो ये सब जगह आपको मिलेगा देखने में, एंजॉय करने के मिलेगा.
0: आपने मार्केट का जिक्र किया, तो मार्केट में ऐसी क्या चीजें हैं जो हम उधर जाके ऐसे परचेस कर सकते हैं वहाँ की याद के तौर पे?
1: हाँ, एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो मार्केट के आप जाएंगे जो नए वाले आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को बहुत महंगा बोलेंगे, कोई भी सामान लेंगे तो आपको बोलेंगे 800, 1000, एक्चुअली प्राइस 200 होता है, 100 होता है. तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं जब भी जा रहा हूँ इस प्लेनेट में कोई भी जगह पे मार्केट करने के लिए, तो अगर उन लोग जो दाम बोल रहे उससे कम से कम आधा से आधा करके हमको स्टार्ट करने है बार्गेनिंग. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ऐसे नॉर्मली होता है कि हम लोग जब बाहर जाते हैं कोई भी जगह पे तो हम लोग बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करना होता है क्योंकि हम लोगों को पता नहीं होता है. तो ये पता होना चाहिए कि कोलकाता बहुत ही चीपेस्ट एरिया है.
0: अच्छा.
1: आपको बहुत ही सस्ते में मिलेगा, बट आपको बार्गेनिंग करना पड़ेगा, आपको बिहेव करना पड़ेगा, कि आपको बोलना पड़ेगा कि हाँ मैं इधर का ही हूँ.
0: अच्छा. पर ये तो आपने बहुत ही बढ़िया बात कही कि आपको बार्गेनिंग करना है और उसका एक्चुअल प्राइस क्या है.
1: हाँ, डेफिनेटली.
0: पर वहाँ की कौन सी ऐसी चीज है या फिर कौन सी ऐसी वस्तुएं है जो हम वहाँ के मार्केट से खरीदी करें याद के तौर पे, हम बाबा कोलकाता घूमने गए थे और उधर से लेके आए?
1: आपको कोई भी शोपीस बोले तो मूर्ति, जैसे छोटा छोटा मूर्ति देवता देवी का, सबको वो सब बहुत अच्छा मिलते उधर, या फिर कोई भी जैसे आप लोगों के लिए लेडीज के लिए बहुत इंस्ट्रूमेंट लाइक ऑर्नामेंट्स, बहुत छोटा छोटा चीज बहुत सस्ते में मिलता है उधर.
0: अच्छा मिलता है,
1: बहुत अच्छा मिलता है.
0: अच्छा, तो वहाँ के लोग किस पे निर्भर है अपना डेली रूटीन या फिर जो औद्योगिक कहते हैं या फिर उद्योग धंधा,
1: जॉब कैसे क्या करते?
0: जॉब के सिलसिले में
1: मोस्टली उधर आप देखा जाए तो गवर्नमेंट सेक्टर में मान लीजिए 20-30% काम करते हैं, बाकी के 15-20% आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, बाकी मोस्टली आपका बिजनेस करते हैं. और अभी बिजनेस के तौर से आप बोल सकते हैं कोई बस चलाता है, कोई टैक्सी चलाता है, कोई ऐसे मार्केट में जाता है ऐसे.
0: यानी कि उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है?
1: नहीं, दिक्कत नहीं, आप कुछ भी आपको जो आता है आप उसके हिसाब से कर सकते हो काम.
0: तो खेती बाड़ी में कैसे है वहाँ का?
1: प्रॉपर कोलकाता में कोई खेती नहीं है, अगर कोलकाता से थोड़ा सा दूर जाए हम लोग.
0: अच्छा.
1: तो उधर मिलेगा, गांव जिधर है उधर आपको खेती मिलेगी.
0: जैसे तो कौन सी फसल ली जाती है उधर
1: नॉर्मली? आपको जैसे, मुझे एग्जैक्टली उसका हिंदी नहीं पता होगा, जैसे हम लोग चावल खाते हैं, चावल बनता है, चावल जैसे गम आटे मैदे सब कुछ बनते हैं उधर.
0: यानी कि गेहूँ.
1: हाँ, मतलब उसका हिंदी प्रॉपर मुझे नहीं पता है, तो वह सब उधर बनता है. मोस्टली आपको मैंगो बहुत मिलेगा, फेमस
0: मैंगोज.
1: अच्छा. उसका क्लाइमेट से ऐसा है कि आपको मैंगोज बहुत मिलेगा. मैंगोज मिलेगा, इवन मैंगोज बाहर भी जाते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की भी बिजनेस होते हैं उधर.
0: फिर क्या वो देवगढ़ हापुस रहता है उसी तरह टेस्ट रहता है या कुछ डिफरेंट रहता है?
1: नहीं, उधर का कुछ एक फेमस जो है आम्रपाली, इसका नाम है आम्रपाली.
0: अच्छा.
1: आम्रपाली छोटा सा आम होता है, वो बहुत टेस्टी होता है. छोटा सा दिखने में होता है बट बहुत टेस्टी होता है उसका।
0: शुभोदीप, हम यहाँ पे अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम फेस्टिवल के बारे में डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो आप कहीं मत जाइएगा, सुनते रहना वेणु धोनी 90.4

0: छोटे से ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आपने ट्यून किया है वेणु धोनी 90.4 KLE कनसु और एक भारत श्रेष्ठ भारत में। आज हम बात कर रहे हैं कोलकाता के बारे में और वो बताने के लिए मेरे साथ मेरे स्टूडियो में है शुभोदीप बेरा। शुभोदीप, कोलकाता का फेमस फेस्टिवल कौन सा रहता है?
1: दुर्गा पूजा।
0: कितने दिन चलती है
1: वो? आपके चलते हैं 5 दिन।
0: 5 दिन।
1: इट स्टार्ट फ्रॉम सप्तमी, पंचमी से स्टार्ट होता है, षष्ठी, सप्तमी। सप्तमी मीन्स 7 डेज, अष्टमी मीन्स 8 डेज, नवमी मीन्स 9 डेज एंड द लास्ट डे इज दशमी। दशहरा जिसको हम लोग बोलते हैं, दैट इज नोन एज दशमी।

0: तो वहाँ पे क्या क्या मीन्स गरबा वगैरह खेला जाता है, डांडिया खेली जाती है?
1: नहीं नहीं नहीं, वो सब नहीं खेला जाता है। पंचमी में माँ को लाया जाता है, माँ मतलब देवी मूर्ति।
0: अच्छा,
1: वो जिस मंडप में उसको बिठाया जाता है उसमें लाया जाता है पंचमी में। षष्ठी में उसका बाकी बच्चे लोगों को गणेश, कार्तिक, लक्ष्मी, सरस्वती इन लोगों को लेके आना होता है। षष्ठी में सप्तमी से चालू होता है, हर दिन अंजलि होता है। अंजलि आपको पता है, जो पुरोहित होते हैं वो मंत्र पढ़ते हैं, हम लोग ऐसे प्रणाम करके फूल हाथ में रख के प्रणाम करके वो मंत्र रिपीट करते हैं, उसके बाद वो फेंकते हैं।
0: अच्छा,
1: ये होता है, हर दिन अंजलि होता है। अष्टमी के दिन आपका कुमारी पूजा एक होता है। कुमारी पूजा मीन्स एक छोटे से बच्ची को पूजा किया जाता है।
0: अच्छा,
1: उसको देवी बना के, ये आपको मिशनरी स्कूल में मिलेगा। जो मैंने मिशन स्कूल से आया हूँ, अष्टमी के दिन बच्चे को सजा के, बहुत छोटे से बच्चे बैठा के उसको पूजा किया जाता है, वो अष्टमी पूजा है।
0: अच्छा।
1: और रात में जो पूजा होता है उसको संधि पूजा बोलते हैं। संधि मतलब इवनिंग।
0: ओके।
1: इवनिंग पूजा होता है। नवमी में दिन में भी पूजा चलता है, पूजा जारी रहता है, अंजलि एवरीडे होता है। और दशमी के दिन आपका वो दही और उसके साथ चीरे, जैसे इधर पोलाव पोहे के साथ जो मटेरियल्स रहते हैं वही खिलाया जाता है माँ को। दशमी के दिन उसको पानी में डुबाया जाता है।
0: तो उस दरमियान ऐसे क्या पकवान बनते हैं तुम्हारे, मतलब आप
1: उसी टाइम आपको सब हम लोग भेज खाते हैं। पांच दिन हम लोग उधर, हम लोग मतलब चाहे वो मांस हो या फिर अंडा हो या फिर फिश हो, कि हम नहीं छोड़ते,
0: कुछ नहीं खाते। अच्छा, तो कौन से ऐसी स्वीट डिश बनाते हैं उस दरमियान?
1: खिचड़ी, खिचड़ी पुलाव, फिर मिक्स्ड सब्जी, कोई भाजी, उसके साथ आपका चटनी, पापड़, सब कुछ वो बनता है। उसके साथ आपका रसगुल्ला रहता है जो फेमस है। डिफरेंट टाइप ऑफ स्वीट्स बनता है, उसके साथ साथ फ्रूट्स रहते हैं जो माँ के लिए पूजा दिया जाता है, वो भी मिलता है।
0: तो ये फेस्टिवल धूमधाम से मनाते हैं?
1: बहुत धूमधाम से मनाते हैं। एक ही फेस्टिवल जो होता है सबसे बड़ा फेस्टिवल, और सबसे बड़ा होता है कि सब छोटे छोटे बच्चे से लेके बड़े तक सब वो पांच दिन के लिए नया कपड़ा पहनते हैं। एवरी डे इज ए न्यू कप, मतलब नया कपड़ा पहन के निकलते हैं हम लोग शाम को। और गर्ल्स लोग साड़ी पहनते हैं, बॉयज लोग पंजाबी कुर्ता पहनते हैं। ये उसका सबसे बड़ा ये होता है,
0: यानी कि डेली नए कपड़े पहन के
1: डेली। हाँ, फुल नाइट सब देखते हैं।
0: अच्छा, मैंने ऐसे देखा है कई बार कि कोलकाता लेडीज का जो पोशाक रहता है वो ऐसे एक साड़ी,
1: साड़ी
0: गांठ बांधी हुई, और ज्यादातर ऐसे व्हाइट और रेड बॉर्डर।
1: हाँ, रेड बॉर्डर। आपने कहानी मूवी देखे क्या?
0: कहानी वो
1: विद्या बालन की। हाँ,
0: हाँ, देखा
1: उसे टाइम हम देखे थे।
0: हाँ,
1: वो एग्जैक्टली दुर्गा पूजा होता है।
0: अच्छा।
1: मैंने और एक चीज बोलना भूल गए थे, लास्ट पूजा जो होता है दशमी के दिन, जैसे हम लोग सिंदूर बोलते हैं, लड़की लोग शादी के टाइम पे जो पहनते हैं इधर बिंदिया जैसे, वो खेलते हैं उन लोग।
0: अच्छा,
1: लड़की लोग खेलते हैं। जो महिला है जो शायद
0: कैसे खेला कैसे जाता है, खेलते मींस क्या करते हैं एक्चुअली?
1: मतलब गाल में लगाते हैं, इसमें लगाते हैं,
0: यानी कि हम इधर होली खेलते। हाँ, उस टाइप
1: ऐसे होली में जैसे हम लोग ऐसे फेंकते हैं, ऐसे नहीं फेंकते सिंदूर को, जैसे आपके गालों में टच करेंगे।
0: अच्छा, उतना ही
1: उतना ही।
0: तो ये डेली का उनका पोशाक रहता है, वो जो साड़ी रहती है व्हाइट कलर की,
1: वो उसी पूजा के दिन कोई भी फेस्टिवल हो, छोटे हो या बड़े हो, जैसे लक्ष्मी पूजा हो, लक्ष्मी पूजा घर पे होते है, सरस्वती पूजा भी घर पे होते है, कोई भी पूजा हो तो वो एक रिवाज होता है कि व्हाइट कलर और रेड कलर का साड़ी पहनने का।
0: फिर जेंट्स क्या पहनते उस दरमियान?
1: उस टाइम कुर्ते और पंजाबी।
0: ओके, अच्छा, बहुत बढ़िया शुभोदीप। और मुझे बताइए कि डेली रूटीन का खाना फिर क्या रहता है?
1: जैसे हम लोग सुबह उठते हैं, तो सुबह उठने के टाइम पे जैसे हम लोग इधर पूरी भाजी खाते हैं, तो हम लोग लूची बोलते हैं, लूची सब्जी।
0: नहीं, इधर तो आपको इडली डोसा वगैरह।
1: हाँ, वो उधर हम लोग ब्रेड एंड बटर खाते, उधर भी हम लोग पोहे ही खाते, बट हम लोग उसको और नाम से बोलते हैं, चिड़ेर पुलाव बोलते उधर।
0: अच्छा,
1: तो कभी वो भी बनता है। अभी कभी कभी हम लोग सुबह में नूडल्स भी खाते हैं, ब्रेड एंड बटर सबसे ज्यादा खाते हैं, कभी कभी पराठा भी खाते हैं। सो ऐसे रहते हैं रूटीन। ये हो गया आपका सुबह का ब्रेकफास्ट, उसके साथ चाय तो कॉमन, बंगालीज आर मोस्टली चाय, सुबह का चाय रहता ही है। दोपहर में लंच के लिए हम लोग राइस रहते हैं, दाल रहते, एक सब्जी रहते, फिश नहीं तो अंडा नहीं तो चिकन। फिश तो बहुत सस्ते में मिलता है।
0: हाँ
1: हाँ, बहुत सस्ते में मिलता है।
0: अच्छा, यानी कि डेली के इसमें खाने में वो रहता ही है।
1: हाँ, डेली में खाने में आपको फिश रहे या फिर एग रहे या फिर चिकन, कुछ भी।
0: अच्छा, तो आप नॉनवेज प्रिय है फिर वो? हाँ,
1: हम लोग नॉनवेज प्रिय है।
0: तो मुझे बताएं शुभोदीप कि आप जब वहाँ से यहाँ आए तो यहाँ सेट होने के लिए या फिर यहाँ पे सेटल होने के लिए आपको कुछ दिक्कतें आई?
1: जी बहुत, 6 मंथ बहुत दिक्कत आई क्योंकि मुझे हिंदी और इंग्लिश छोड़ के कुछ नहीं आता था इधर।
0: ओके।
1: किसी को समझाने के लिए या फिर इधर के खाने के लिए, कहाँ खाने का, रहने का, कभी कभी कॉलेज में सब पेशेंट को हैंडल करने के लिए अपने भाषा को उनको पता नहीं है, सिर्फ कन्नड़ पता है, तो एक फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन आता ही था। तो दिक्कत हुई है, ऐसा नहीं कि मैं नहीं झूठ बोल रहा हूँ, नहीं दिक्कत हुई है, होता ही है, मतलब नया एरिया है, कभी कभी घर के लिए भी बहुत दुख होता था, इतना दूर, बहुत दूर है पता है ना आपको, 2015 किलोमीटर फ्रॉम कोलकाता।
0: अरे बाप रे।
1: सो बाय ट्रेन इट विल टेक आपको 36 आवर्स, एंड बाय फ्लाइट फ्रॉम गोवा इट विल टेक 2 आवर्स।
0: फिर आपके घर पे कौन कौन रहता है?
1: मेरे फैमिली रहते हैं, मेरे मम्मी पापा और मैं अकेला हूँ।
0: तो मम्मी डैडी अभी वहाँ पे है। बिजनेस के तौर पे वहाँ पे कौन सा बिजनेस ज्यादातर किया जाता है?
1: मतलब स्टील का बिजनेस हुआ
0: जाता है। आपने बताया कि ऐसी सब चीजें वहाँ पे सस्ती मिलती है, मार्केट में सब चीजें बहुत अच्छे से सस्ती मिलती है आपको, ट्रांसपोर्ट भी बहुत सस्ता है।
1: ट्रांसपोर्ट भी बहुत सस्ता है।
0: अच्छा, तो उसकी वजह भी कुछ होगी ना कि इतना सस्ता है सब कुछ?
1: वजह इस है कि उधर का लिविंग स्टेटस आपको देखा जाए तो गरीब से लेके मतलब जो बहुत रिच है आदमी सब रहते हैं, सबके लिए सम्मान एक ही होता है। और जो बिजनेस करते हैं मोस्टली मारवाड़ी जो होते हैं ना, राजस्थान हिंदुस्तानी जो बोलते हैं हम लोग, उन लोग करते हैं जैसे नॉर्मल स्टील के बिजनेस उन लोग करते हैं। और उधर आदमी का एक पैशन रहता है कुछ भी करने का, तो आदमी लोग उधर आप कुछ भी बिजनेस करो वो बिकता ही है, मतलब आदमी कमाता भी जैसा है, उसके साथ साथ उन लोगों का डिजायर भी बहुत बढ़ता है, तो इसलिए उनका मतलब कोई भी बिजनेस लॉस नहीं होता है, चल ही जाता है। और सबसे ज्यादा अच्छा बिजनेस होता है खाने का, कुछ भी आपको एवरी 10 मिनट्स में आपको कुछ भी खाने का स्टॉल मिलेगा।
0: अच्छा,
1: कुछ भी खाने का, फास्ट फूड इधर नहीं मिलता होगा शायद, उधर बहुत फेमस होता है फास्ट फूड, लाइक एग रोल मिलता है, मुगलाई बोलते हैं हम लोग, एक पराठा का बनता है उसमें एग और चिकन मिला के स्क्वायर शेप का होता है, नूडल्स।

0: सुर में गाना सीखिए पाधानिसा ऐप के साथ AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।
1: वो नहीं आने वाली, वो बेवफा निशलावादी।

कैसे दिशा दिखा सकता है। इतने बड़े राजे रजवाड़ों को एक करने का भगीरथ काम, भारत के नेतृत्व का, धरती से जुड़े हुए नेतृत्व का सामर्थ्य हम दुनिया के सामने प्रस्तुत

0: सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एकता का काम किया था। हिंदुस्तान के हर कोने को जोड़ना है, वो किसान थे इसलिए किसान को जोड़ना है।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं वेणु धोनी 90.4 KLE कनसू। आज के इस विशेष कार्यक्रम में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। कार्यक्रम का नाम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत एक ऐसी नई और प्रभावशाली योजना है जो भारत सरकार द्वारा अभी हाल ही में शुरू की गई है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर 2015 सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस पर इस नई पहल को शुरू करने की घोषणा की थी। इस योजना का उद्देश्य मौजूदा सांस्कृतिक संबंधों के माध्यम से देश के विभिन्न भागों में एकता को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य

करना है जो पूरे देश में अलग अलग भागों में रह रहे हैं। ये पहल लोगों को लोगों से जोड़ेगी जो वास्तव में भारत में एकता को बढ़ाएगी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आज बात करेंगे शुभोदय पेरा। वो बेसिकली कोलकाता से हैं और बेलगम में वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी में। तो उनसे मैं आज बातचीत करूंगी और आप लोगों को यहाँ बैठे बैठे कोलकाता की इस सैर करवा के लाऊंगी। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहें और सुनते रहें वेणुधुनी 90.4 के।

0: शुभोदय, आपका हमारे स्टूडियो में दिल से स्वागत है।
1: जी आपको भी नमस्कार, प्रणाम।
0: मुझे बताया कि कोलकाता बोले तो बहुत सी बातें सामने आती है, तो वो सब हम डिटेल में जानना चाहेंगे कि कैसे है कोलकाता।
1: पहले मैं आपसे एक पूछता हूँ, आप कभी गए हो कोलकाता?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं, हमने तो सिर्फ टीवी में ही देखा है।
1: कोलकाता के बारे में आपको कितना पता है, मतलब किस चीज में आपको ज्यादा ध्यान जाता है, क्रिकेट या फिर और कुछ?
0: धार्मिक स्थल ऐसे बहुत देखने लायक है,
1: बहुत कुछ है। पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, कोलकाता इज ए प्योरली बंगाली भाषा जानता है,
0: और बंगाल को अगर सुना जाए तो बंगाली स्वीट्स ही सामने आते हैं।
1: बंगाली स्वीट्स सबसे ज्यादा पहले सामने आते हैं। ऐसे स्वीट्स के अलावा बहुत कुछ मिलेगा आपको, ऐसे खाने के लिए आपको बहुत सस्ता मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट फूड से लेके दोपहर लंच और रात के डिनर सब कुछ आपको सस्ते में मिलेगा। लिविंग स्टेटस बहुत सस्ता है उधर रहने के लिए। वहाँ जो जो बाहर से पढ़ने आते, पढ़ाई के लिए आते, जॉब के लिए आते, कोई भी चीज अगर उनको रहना है, रहने के लिए, खाने के लिए, उनके सैलरी के हिसाब से बहुत सस्ते उधर। हाँ, मैंने उधर से ग्रेजुएशन किया उधर, तो बहुत सस्ता है। इट्स लिव, आपको एक छोटा सा चाय भी मिलेगा 4 रुपए से लेके।
0: अरे वाह,
1: चाय मिलेगा, बस का भाड़ा मिलेगा मिनिमम 4 रुपए 5 रुपए। मेट्रो सिटी है उधर, अंडरग्राउंड मेट्रो सिटी है, तो दीज आर द ट्रांसपोर्ट सिस्टम। बट हाँ, उधर बहुत आपको ट्रैफिक जैम मिलेगी, ये आपको यू शुड हैव अ पेशेंस, आपको मतलब धैर्य रखना पड़ेगा कि अपने ऊपर। अभी बताया जाए कि धार्मिक शाले बहुत है, दक्षिणेश्वर है, बहुत फेमस है, आपने सुना होगा, एक मूवी भी आई थी उधर शूटिंग हुआ था, बहुत सारे शूटिंग हुए, आपने देखे होंगे। दक्षिणेश्वर है, कालीघाट है, बेलूर है, बहुत मिशनरी स्कूल है, मैं खुद मिशनरी स्कूल से आया हूँ।
0: अच्छा,
1: तो बेलूर आपने नाम सुना होगा शायद, बेलूर या
0: हाँ, कोई बेलूर का नाम सुना है।
1: इंटरनेशनल मिशन है बहुत, तो कोलकाता में बहुत है।
0: अच्छा,
1: उधर मेन फेस्टिवल्स दुर्गा पूजा होता है इन द मंथ ऑफ सितंबर और अक्टूबर।
0: अच्छा शुभोदय, मैं यहाँ पे आपको रोकूंगी, फेस्टिवल की तरफ हम बढ़ेंगे, पर उसके पहले मुझे जानना है कि मिशनरी स्कूल आपने जो कहा अभी उल्लेख किया, तो वो क्या है?
1: मिशनरी स्कूल मैम उधर है कि सिर्फ मिशन स्कूल, मतलब महाराज जो होते हैं हमारे, जो साधु सन्यासी होते हैं, उन लोग ही चलाते हैं।
0: ओके,
1: स्टाफ रहते हैं, उन लोगों का पेमेंट थ्रू आउट गवर्नमेंट होता है, बट दीज आर द ओनर, दे आर द ओनर, साधु जो रहते हैं उन लोग ओनर रहते हैं, मिशन स्कूल है। बच्चे उधर रह के भी, हॉस्टल में रह के भी पढ़ सकते हैं, या फिर कोई लोकलाइट है जा सकते हैं पढ़ने के लिए।
0: अच्छा।
1: तो मैं क्लास 5 स्टैंडर्ड से लेकर 12 स्टैंडर्ड तक उधर ही पढ़ा हूँ। हमारे उधर ऐसे यूनिवर्सिटी के हिसाब से नहीं होता है, क्लास 12 तक स्कूल में ही पढ़ना होता है, आइदर तुम्हारे इंग्लिश मीडियम हो या बंगाली मीडियम। पहले 10 तक स्कूल थे, 11-12 कॉलेज में होते थे, उसके बाद चेंज कर दिए उन लोगों ने, 11-12 कॉलेज के अंदर नहीं रखा, स्कूल के अंदर ही रखा है। तो मैं मिशन स्कूल से हूँ।
0: अच्छा, तो वहाँ पे रहते थे या फिर?
1: नहीं नहीं, मेरे घर के पास ही थे, तो मैं डे टू डे जाता था।
0: अच्छा।
1: मैं अप डाउन करता था।
0: ओके, तो वहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है?
1: मोस्टली देखा जाए तो बंगाली भाषा बोले जाते, तो कोलकाता से नजदीक बिहार है, तो उधर भी बिहारी भी बहुत रहते, तो इट्स लाइक बंगाली भी चलते, हिंदी भी चलते।

0: इंग्लिश भी चलते हैं, मोस्टली बंगाली चलता है।
1: और कोलकाता में भी वही भाषा बोली जाती है
0: जी।
1: ओके, तो मुझे अभी बताया कि आपको यहाँ आके बहुत खुशी हुई है, ऐसा अगर आपको बंगाली में कहना है तो क्या कहेंगे आप?
0: हमारे एखाने एशे खूब भालो लगलो।
1: अच्छा, यानी
0: हमार मीन्स मेरे को, एखाने मीन्स हियर, एशे मीन्स कम, भालो मीन्स गुड, लगलो मीन्स आई फील।
1: बहुत अच्छा है, तो आप उधर वही भाषा बोल देते?
0: जी जी, मैं उधर ही बांग्ला भाषा बोलता हूँ।
1: तो बेलगाम,
0: आपको पता है कि बंगाली इज द वर्ल्ड स्वीटेस्ट लैंग्वेज? आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको मिलेगा कि वर्ल्ड स्वीटेस्ट लैंग्वेज इज बंगाली।
1: अच्छा, तो आपको क्या लगता है मीन्स वो इजीली सीखी जा सकती है?
0: जी, मैंने अपने बैचमेट्स जो मैंने जहाँ से यूजी किया है, तो बहुत सारे बाहर से आए थे। आफ्टर फाइनल इयर्स लोग को थोड़ा थोड़ा टूटा टूटा आ जाता है। जैसे मैं अभी इधर आ गया हूँ, मराठी मुझे समझ में आता है।
1: अच्छा,
0: बट मैं बोल नहीं पाता हूँ, सो मेरे बैचमेट को भी समझ में आता है कि क्या बोलना चाहते हैं।
1: ओके,
0: अपने वाले क्या बोलना चाहते हैं, तो उनको समझ में आता है, सीख जाएंगे।
1: बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आके आपको कितने दिन हो गए?
0: मेरा एक साल हो गया। इस आज के दिन जो है, मैंने इसी दिन आया था बेलगाम में लास्ट ईयर कॉलेज देखने के लिए, तो एक साल हो गया।
1: अच्छा।
0: मेरे 2 साल के कोर्स है, ऑलरेडी 1 साल चला गया
1: और 1 साल बचा।
0: और 1 साल
1: तो वापस बैक टू पेवेलियन?
0: बैक टू पेवेलियन जाना ही होगा।
1: शुभोदीप, मुझे बताएं कि कोलकाता में और क्या ऐसी खास बातें हैं जो जहाँ पे जाके हम देख सके?
0: देखने के लिए बहुत जगह है, आपको इधर सबसे ज्यादा प्यार मिलेगा।
1: अच्छा।
0: इंसानियत मिलेगी।
1: ओके।
0: घूमने के लिए जगह मिलेगा, खाने के लिए, रहने के लिए सब कुछ मिलेगा। और फेस्टिवल आप अटेंड कर सकते हो, बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग बंगालीज के लिए दुर्गा पूजा होता है, इवन ऑल्सो क्रिश्चियन वी हैव ए चर्च ऑल्सो, मुस्लिम के लिए उन लोगों की मस्जिद भी है। सो इट्स नॉट ओनली, और आपको हमारे हिंदू भाषा ही मिलेंगे उधर, मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन भी है, उन लोगों को भी आपको चर्च में देखने को मिलेगा। बहुत सारी जगह है आपको देखने के लिए। मुस्लिम अंडरग्राउंड मेट्रो मिलेगा आपको देखने के लिए।
1: अच्छा।
0: जो अभी कोलकाता में सिर्फ है अंडरग्राउंड मेट्रो, जो माटी के अंदर से जाते हैं वो।
1: ओके।
0: अभी नया मेट्रो बन रहा है, वो आपका गंगा नदी है उधर, उसके अंदर से बना रहा है उन लोग, अभी चल रहा है।
1: मुझे बताया कि कोलकाता में मीन्स अगर हम गूगल पे सर्च करते हैं कुछ देखने के लिए, तो वहाँ पे बहुत सारी चीजें बताई जा सकती होंगी।
0: डेफिनेटली आपको बता
1: पर प्रॉपर आप उधर के हैं, तो ऐसे भी चीजें आपको या फिर ऐसे भी ठिकान प्लेसेस आपको पता होंगे जो गूगल पे नहीं मिलेंगे शायद, और देखने लायक होंगे, ऐसी कुछ है जगह?
0: ऐसे बोले जाए तो आप अगर कोलकाता जाने के लिए आप 3 एरिया चूज कर सकते हैं, इधर फ्लाइट, ट्रेन और बाय बस। तो ऐसे बहुत सारे चीज, जैसे मैंने आपको बोला, ऐसा कुछ चीज नहीं है जो आपको गूगल पे नहीं मिलेगा, सभी मिलेगा आपको। ऐसे छोटा छोटा चीज, जैसे हाँ, जब कोई फेस्टिवल होता है कोई भी, मान लो ऐसा नहीं कि किसी हर घर पे या फिर कोई क्लब में फेस्टिवल होता है, बहुत सारे क्लब में फेस्टिवल होता है, तो आपको स्पेशल फेमस एरिया का मिलेगा, बट बाकी बहुत सारे जगह पे भी होता है छोटा छोटा करके, तो आपको वो नहीं मिलेगा गूगल पे। ऐसे बहुत सारे एरिया है।
1: अच्छा, यानी कि सब जो गूगल पे वगैरह इन्फॉर्मेशन है
0: आपको मिलेगा
1: वो सब है। अच्छा, तो आसपास और क्या देखने लायक है
0: आपको? विक्टोरिया मिलेगा, नेशनल लाइब्रेरी मिलेगा, नेशनल म्यूजियम मिलेगा, और आपको एक बड़ा सा मार्केट, मतलब फेमस मार्केट है उधर, सब कुछ सस्ते में मिलता है। एस्प्लैनेड बोल के एक जगह है जिधर आपको मार्केट मिलता है, 24 आवर्स चलता है वो।
1: अच्छा।
0: इवन आपको पार्क स्ट्रीट एक जगह है जिसमें हम लोग क्रिसमस या फिर न्यू ईयर पार्टी करते हैं, तो ये सब जगह आपको मिलेगा देखने में, एंजॉय करने को मिलेगा।
1: आपने मार्केट का जिक्र किया, तो मार्केट में ऐसी क्या चीजें हैं जो हम उधर जाके ऐसे परचेज कर सकते हैं वहाँ की याद के तौर पे?
0: हाँ, एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो मार्केट के आप जाएंगे जो नए वाले आप लोग जाएंगे, तो आप लोगों को बहुत महंगा बोलेंगे, कोई भी सामान लेंगे तो आपको बोलेंगे 800, 1000, एक्चुअली प्राइस 200 होता है, 100 होता है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं जब भी जा रहा हूँ इस प्लैनेट में कोई भी जगह पे मार्केट करने के लिए, तो अगर उन लोग जो दाम बोल रहे उससे कम से कम आधा से आधा करके हमको स्टार्ट करना है बार्गेनिंग, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ऐसे नॉर्मली होता है कि हम लोग जब बाहर जाते हैं कोई भी जगह पे, तो हम लोग बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करना होता है, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं होता है। तो ये पता होना चाहिए कि कोलकाता बहुत ही चीपेस्ट एरिया है।
1: अच्छा।
0: आपको बहुत ही सस्ते में मिलेगा, बट आपको बार्गेनिंग करना पड़ेगा, आपको बिहेव करना पड़ेगा, कि आपको बोलना पड़ेगा कि हाँ मैं इधर का ही हूँ।
1: अच्छा। पर ये तो आपने बहुत ही बढ़िया बात कही कि आपको बार्गेनिंग करना है और उसका एक्चुअल प्राइस क्या है।
0: हाँ हाँ, डेफिनेटली।
1: पर वहाँ की कौन सी ऐसी चीज है या फिर कौन सी ऐसी वस्तुएं है जो हम वहाँ के मार्केट से खरीदी करें याद के तौर पे, हम बाबा कोलकाता घूमने गए थे और उधर से लेके आए?
0: आपको कोई भी शोपीस बोले तो मूर्ति, जैसे

0: छोटा छोटा मूर्ति देवता देवी का सबको, वो सब बहुत अच्छे मिलते हैं उधर। या फिर कोई भी जैसे आप लोगों के लिए लेडीज़ के लिए बहुत इंस्ट्रूमेंट लाइक ऑर्नामेंट्स, बहुत छोटा छोटा चीज़ बहुत सस्ते में मिलता है उधर।
1: अच्छा मिलता है,
0: बहुत अच्छा मिलता है।
1: अच्छा, तो वहाँ के लोग किस पे निर्भर है अपना डेली रूटीन, या फिर जो औद्योगिक कहते हैं या फिर उद्योग धंधा,
0: जॉब कैसे क्या करते,
1: जॉब के सिलसिले में?
0: मोस्टली उधर आप देखा जाए तो गवर्नमेंट सेक्टर में मान लीजिए 20-30% काम करते हैं, बाकी के 15-20% और प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, बाकी मोस्टली आपका बिजनेस करता है। और अभी बिजनेस के तौर से आप बोल सकते हैं कोई बस चलाता है, कोई टैक्सी चलाता है, कोई ऐसे मार्केट में जाता है ऐसे।
1: यानी कि उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है?
0: नहीं, दिक्कत नहीं, आप कुछ भी आपको जो आता है आप उसके हिसाब से कर सकते हो काम।
1: तो खेती बाड़ी में कैसे है वहाँ का?
0: प्रॉपर कोलकाता में कोई खेती नहीं है, अगर कोलकाता से थोड़ा सा दूर जाए हम लोग।
1: अच्छा।
0: तो उधर मिलेगा, गांव जिधर है उधर आपको खेती मिलेगी।
1: जैसे तो कौन सी फसल ली जाती है उधर
0: नॉर्मली? आपको जैसे, मुझे एग्जैक्टली उसका हिंदी नहीं पता होगा, जैसे हम लोग चावल खाते हैं, चावल बनता है, चावल जैसे गम आटे मैदा सब कुछ बनते हैं उधर।
1: यानी कि गेहूँ
0: हाँ, मतलब उसका हिंदी प्रॉपर मुझे नहीं पता है, तो वह सब उधर बनता है। मोस्टली आपको मैंगो बहुत मिलेगा, फेमस
1: मैंगोज।
0: अच्छा, उसका क्लाइमेट से ऐसा है कि आपको मैंगोज बहुत मिलेगा। मैंगोज मिलेगा, इवन मैंगोज बाहर भी जाते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की भी बिजनेस होते हैं उधर।
1: फिर क्या वो देवगढ़ हापुस रहता है उसी तरह टेस्ट रहता है या कुछ डिफरेंट रहता है?
0: नहीं, उधर का कुछ एक फेमस जो है आम्रपाली, इसका नाम है आम्रपाली।
1: अच्छा,
0: आम्रपाली छोटा सा आम होता है, वो बहुत टेस्टी होता है। छोटा सा दिखने में होता है बट बहुत टेस्टी होता है उसका।
1: शुभोदीप, हम यहाँ पे अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम फेस्टिवल के बारे में डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो आप कहीं मत जाइएगा, सुनते रहना वेणु धोनी 90.4 की।

0: छोटे से ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आपने ट्यून किया है वेणु धोनी 90.4 KLE कनसु और एक भारत श्रेष्ठ भारत में। आज हम बात कर रहे हैं कोलकाता के बारे में और वो बताने के लिए मेरे साथ मेरे स्टूडियो में है शुभोदीप बेरा। शुभोदीप, कोलकाता का फेमस फेस्टिवल कौन सा रहता है?
1: दुर्गा पूजा।
0: कितने दिन चलती है
1: वो? आपके चलते है 5 दिन।
0: 5 दिन।
1: इट स्टार्ट फ्रॉम सप्तमी, पंचमी से स्टार्ट होता है। षष्ठी, सप्तमी, सप्तमी मीन्स 7 डेज, अष्टमी मीन्स 8 डेज, नवमी मीन्स 9 डेज एंड द लास्ट डेज दशमी। दशहरा जिसको हम लोग बोलते हैं, दैट इज नोन एज दशमी।

0: तो वहाँ पे क्या क्या मीन गरबा वगैरह खेला जाता है, दांडिया खेली जाती है?
1: नहीं नहीं नहीं, वो सब नहीं खेला जाता है। पंचमी में माँ को लाया जाता है, माँ मतलब देवी मूर्ति।
0: अच्छा।
1: वो जिस मंडप में उसको बिठाया जाता है उसमें लाया जाता है पंचमी में। षष्ठी में उसका बाकी बच्चे लोगों को गणेश, कार्तिक, लक्ष्मी, सरस्वती इन लोगों को लेके आना होता है। षष्ठी में सप्तमी से चालू होता है, हर दिन अंजलि होता है। अंजलि आपको पता है, जो पुरोहित होते हैं वो मंत्र पढ़ते हैं, हम लोग ऐसे प्रणाम करके फूल हाथ में रख के प्रणाम करके वो मंत्र रिपीट करते हैं, उसके बाद वो फेंकते हैं।
0: अच्छा।
1: ये होता है, हर दिन अंजलि होता है। अष्टमी के दिन आपका कुमारी पूजा एक होता है। कुमारी पूजा मीन्स एक छोटे से बच्ची को पूजा किया जाता है।
0: अच्छा।
1: उसको देवी बना के, ये आपको मिशनरी स्कूल में मिलेगा।
0: ओके।
1: जो मैंने मिशन स्कूल से आया हूँ, अष्टमी के दिन बच्चे को सजा के, बहुत छोटे से बच्चे बैठा के उसको पूजा किया जाता है, वो अष्टमी पूजा है।
0: अच्छा।
1: और रात में जो पूजा होता है उसको संधि पूजा बोलते हैं। संधि मतलब इवनिंग।
0: ओके।
1: इवनिंग पूजा होता है। नवमी में दिन में भी पूजा चलता है, पूजा जारी रहता है, अंजलि एवरी डे होता है। और दशमी के दिन आपका वो दही और उसके साथ चीरे, जैसे इधर पोलाव पोहे के साथ जो मटेरियल्स रहते हैं वही खिलाया जाता है माँ को। दशमी के दिन उसको पानी में डुबाया जाता है।
0: तो उस दरमियान ऐसे क्या पकवान बनते हैं तुम्हारे, मतलब आप
1: उसी टाइम आपको
0: सबके?
1: सब हम लोग भेज खाते हैं। 5 दिन हम लोग उधर, हम लोग मतलब चाहे वो मांस हो या फिर अंडा हो या फिर फिश हो, कि हम नहीं छोड़ते,
0: कुछ नहीं खाते। अच्छा, तो कौन से ऐसी स्वीट डिश बनाते हैं उस दरमियान?
1: खिचड़ी, खिचड़ी पुलाव, फिर मिक्स्ड सब्जी, कोई भाजी, उसके साथ आपका चटनी, पापड़, सब कुछ वो बनता है। उसके साथ आपका रसगुल्ला रहता है जो फेमस है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्वीट्स बनता है। उसके साथ साथ फ्रूट्स रहते हैं जो माँ के लिए पूजा दिया जाता है, वो भी मिलता है।
0: तो ये फेस्टिवल धूमधाम से मनाते हैं?
1: बहुत धूमधाम से मनाते हैं। एक ही फेस्टिवल जो होता है सबसे बड़ा फेस्टिवल, और सबसे बड़ा होता है कि सब छोटे छोटे बच्चे से लेके बड़े तक सब वो 5 दिन के लिए नया कपड़ा पहनते हैं। एवरी डे इज ए न्यू मतलब नया कपड़ा पहन के निकलते हैं हम लोग शाम को। और गर्ल्स लोग साड़ी पहनते हैं, बॉयज लोग पंजाबी कुर्ता पहनते हैं। ये उसका सबसे बड़ा ये होता है,
0: यानी कि डेली नए कपड़े पहन के
1: डेली, हाँ, फुल नाइट सब देखते हैं।
0: अच्छा। मैंने ऐसे देखा है कई बार कि कोलकाता लेडीज का जो पोशाक रहता है वो ऐसे एक साड़ी,
1: साड़ी
0: गांठ बांधी हुई, और ज्यादातर ऐसे व्हाइट और रेड बॉर्डर।
1: हाँ, रेड बॉर्डर। आपने कहानी मूवी देखे है क्या?
0: कहानी वो
1: विद्या बालन की? हाँ,
0: देखा है।
1: उसे टाइम हम देखे थे।
0: हाँ,
1: वो एग्जैक्टली दुर्गा पूजा होता है।
0: अच्छा।
1: मैंने और एक चीज बोलना भूल गए थे, लास्ट पूजा जो होता है दशमी के दिन, जैसे हम लोग सिंदूर बोलते हैं, लड़की लोग शादी के टाइम पे जो पहनते हैं इधर बिंदिया जैसे, वो खेलते हैं उन लोग।
0: अच्छा।
1: लड़की लोग खेलते हैं। जो महिला है जो शादी,
0: कैसे खेला कैसे जाता है, खेलते मीन्स क्या करते हैं एक्चुअली?
1: मतलब गाल में लगाते हैं, इसमें लगाते हैं,
0: यानी कि हम इधर होली खेलते हैं उस टाइप।
1: ऐसे होली में जैसे हम लोग ऐसे फेंकते हैं, ऐसे नहीं फेंकते सिंदूर को, जैसे आपके गालों में टच करेंगे।
0: अच्छा, उतना ही?
1: उतना ही।
0: तो ये डेली का उनका पोशाक रहता है, वो जो साड़ी रहती है व्हाइट कलर की,
1: वो उसी पूजा के दिन कोई भी फेस्टिवल हो, छोटे हो या बड़े हो, जैसे लक्ष्मी पूजा हो, लक्ष्मी पूजा घर पे होते है, सरस्वती पूजा भी घर पे होते है, कोई भी पूजा हो तो वो एक रिवाज होता है कि व्हाइट कलर और रेड कलर का साड़ी पहनने का।
0: फिर जेंट्स क्या पहनते उस दरमियान?
1: उस टाइम कुर्ते और पंजाबी।
0: ओके। अच्छा, बहुत बढ़िया शुभोदीप। और मुझे बताइए कि डेली रूटीन का खाना फिर क्या रहता है?
1: जैसे हम लोग सुबह उठते हैं, तो सुबह उठने के टाइम पे जैसे हम लोग इधर पूरी भाजी खाते हैं, तो हम लोग लूची बोलते हैं, लूची सब्जी।
0: नहीं, इधर तो आपको इडली डोसा वगैरह।
1: हाँ,
0: वो
1: उधर हम लोग ब्रेड एंड बटर खाते, उधर भी हम लोग पोहे ही खाते, बट हम लोग उसको और नाम से बोलते हैं, चिड़ेर पुलाव बोलते उधर।
0: अच्छा।
1: तो कभी वो भी बनता है, अभी कभी कभी हम लोग सुबह में नूडल्स भी खाते हैं, ब्रेड एंड बटर सबसे ज्यादा खाते, कभी कभी पराठा भी खाते। सो ऐसे रहते हैं रूटीन। ये हो गया आपका सुबह का ब्रेकफास्ट, उसके साथ चाय तो कॉमन, बंगालीज आर मोस्टली चाय, सुबह का चाय रहता ही है। दोपहर में लंच के लिए हम लोग राइस रहते, दाल रहते, एक सब्जी रहते, फिश नहीं तो अंडा नहीं तो चिकन। फिश तो बहुत सस्ते में मिलता है।
0: हाँ
1: हाँ, बहुत सस्ते में मिलता है।
0: अच्छा, यानी कि डेली के इसमें खाने में वो रहता ही है।
1: हाँ, डेली में खाने में आपको फिश रहे या फिर एग रहे या फिर चिकन, कुछ भी।
0: अच्छा, तो आप नॉनवेज प्रिय है फिर वो?
1: हाँ, हम लोग नॉनवेज प्रिय है।
0: तो मुझे बताएं शुभोदीप कि आप जब वहाँ से यहाँ आए तो यहाँ सेट होने के लिए या फिर यहाँ पे सेटल होने के लिए आपको कुछ दिक्कतें आई?
1: जी बहुत, 6 मंथ बहुत दिक्कत आई क्योंकि मुझे हिंदी और इंग्लिश छोड़ के कुछ नहीं आता था इधर।
0: ओके।
1: किसी को समझाने के लिए या फिर इधर के खाने के लिए, कहाँ खाने का, रहने का, कभी कभी कॉलेज में सब पेशेंट को हैंडल करने के लिए अपने भाषा को उनको पता नहीं है, सिर्फ कन्नड़ पता है, तो एक फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन आता ही था। तो दिक्कत हुई है, ऐसा नहीं कि मैं नहीं झूठ बोल रहा हूँ, नहीं दिक्कत हुई है, होता ही है, नया मतलब नया एरिया है, कभी कभी घर के लिए भी बहुत दुख होता था, इतना दूर, बहुत दूर है पता है ना आपको, 2015 किलोमीटर फ्रॉम कोलकाता।
0: अरे बाप रे।
1: सो बाय ट्रेन इट विल टेक आपको 36 आवर्स, एंड बाय फ्लाइट फ्रॉम गोवा इट विल टेक 2 आवर्स।
0: फिर आपके घर पे कौन कौन रहता है?
1: मेरे फैमिली रहते हैं, मेरे मम्मी पापा और मैं अकेला हूँ।
0: तो मम्मी डैडी अभी वहाँ पे है। बिजनेस के तौर पे वहाँ पे कौन सा बिजनेस ज्यादातर किया जाता है?
1: मतलब आपने, का बिजनेस हुआ
0: जाता है। आपने बताया कि ऐसी सब चीजें वहाँ पे सस्ती मिलती है, मार्केट में सब चीजें बहुत अच्छे से सस्ती मिलती है आपको, ट्रांसपोर्ट भी बहुत सस्ता है।
1: ट्रांसपोर्ट भी बहुत सस्ता है।
0: अच्छा, तो उसकी वजह भी कुछ होगी ना कि इतना सस्ता है सब कुछ?
1: वजह इस है कि उधर का लिविंग स्टेटस आपको देखा जाए तो गरीब से लेके मतलब जो बहुत रिच है आदमी सब रहते हैं, सबके लिए सम्मान एक ही होता है। और जो बिजनेस करते हैं मोस्टली मारवाड़ी जो होते हैं ना, राजस्थान हिंदुस्तानी जो बोलते हैं हम लोग, उन लोग करते हैं ऐसे नॉर्मल स्टील के बिजनेस उन लोग करते हैं। और उधर आदमी का एक पैशन रहता है कुछ भी करने का, तो आदमी लोग उधर आप कुछ भी बिजनेस करो वो बिकता ही है, मतलब आदमी कमाता भी जैसा है, उसके साथ साथ उन लोगों का डिजायर भी बहुत बढ़ता है, तो इसलिए उनका मतलब कोई भी बिजनेस लॉस नहीं होता है, चल ही जाता है। और सबसे ज्यादा अच्छा बिजनेस होता है खाने का, कुछ भी आपको एवरी 10 मिनट्स में आपको कुछ भी खाने का स्टॉल मिलेगा।
0: अच्छा,
1: कुछ भी खाने का फर्स्ट फूड इधर नहीं मिलता होगा शायद, उधर बहुत फेमस होता है फर्स्ट फूड, लाइक एग रोल मिलता है, मुगलाई बोलते हैं हम लोग, एक पराठा का बनता है उसमें एग और चिकन मिला के, स्क्वायर शेप का होता है, नूडल्स मिलता है, बहुत सारे कटलेट मिलता है, फिश कटलेट मिलता है, बहुत कुछ मिलता है।
0: नहीं पर बंगाल अगर सुना जाए ना तो बंगाली स्वीट से सामने आते हैं, इतना क्यों फेमस है उधर का स्वीट? मतलब टेस्ट में तो बहुत ही अच्छा लगता है वो, नो डाउट, पर इतना क्यों उधर बनता है?
1: देखा जाए कि बंगाली स्वीट के साथ साथ बहुत कुछ ही फेमस है, उसका लिविंग स्टाइल, खाने का, फिश का आइटम बहुत कुछ फेमस है, बट मैंने इधर आके सुना कि सब लोग स्वीट्स के बारे में बहुत कुछ
0: जानते हैं।
1: उधर का स्वीट्स का एक अलग सी फ्लेवर रहते है, आपको डिफरेंट शेप में रसगुल्ला मिलेगा, डिफरेंट कलर का रसगुल्ला मिलेगा,
0: रसमलाई
1: मिलेगा आपको, व्हाइट कलर का भी मिल सकता है, ब्लैक भी मिल सकता है, ग्रीन का मिल सकता है, येलो का भी मिल सकता है।
0: अरे वाह,
1: बहुत कुछ मिलेगा।
0: अच्छा, तो आप कब लास्ट टाइम जाके आए कोलकाता?
1: मैं लास्ट टाइम दिस जून में गया था, मैं फर्स्ट वीक में।
0: ओहो, यानी कि रिसेंटली जाके आया अभी?
1: रिसेंटली जाके आया मैंने।
0: अच्छा, तो अभी कंप्लीट होने के बाद ही जाएंगे?
1: हाँ जी, अभी कंप्लीट होने के बाद, अभी हमारे दिसंबर में एक छुट्टी मिलता है, अगर पॉसिबल है तो जा सकता हूँ, विंटर सीजन का छुट्टी और क्रिसमस का छुट्टी मिलता है तो इसलिए जा सकता।
0: तो आपके यहाँ पे यही एक जो दुर्गा पूजा रहती है वही एक फेस्टिवल धूमधाम से मनाया जाता है?
1: सबसे ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है,
0: बाकी नॉर्मली
1: जैसे लक्ष्मी पूजा होता है, सरस्वती पूजा होता है, गणेश पूजा होता है, वो सब होता है पूजा, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, बट बहुत धूमधाम से नहीं होता है। कोई अगर मन करे, कोई भी, जैसे गणेश पूजा मेनली उधर गैरेज जो होता है, गाड़ी का गैरेज या फिर रखने का, उधर सबसे ज्यादा होता है गणेश पूजा। लक्ष्मी पूजा हर घर पे होते है, सरस्वती पूजा फरवरी मंथ में होता है, हर स्कूल में होता है सबसे ज्यादा।
0: अच्छा,
1: ऐसे होता है।
0: तो वहाँ का क्लाइमेट कैसे है?
1: उधर का अगर देखा जाए, कोलकाता का क्लाइमेट बहुत गर्मी है, मोस्ट ऑफ द टाइम गर्मी रहते है बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। और ठंड आते है आपको आफ्टर दुर्गा पूजा, नवम्बर दिसंबर में आता है, बट अप्रोक्स आपको रहता है, अभी मॉनसून चल रहा है फिर भी उसका टेम्परेचर आपको 28-27 मिलेगा। बहुत पोल्यूशन है, पोल्यूशन की वजह से बहुत क्लाइमेट चेंज होता है।
0: यानी कि बारिश उतनी ज्यादा नहीं रहती?
1: बारिश उतनी ज्यादा नहीं होती है,
0: ठंडी और गर्मी बहुत होती है।
1: ठंड आपको अगर सीजन देखा जाए तो ठंडी और गर्मी मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, और बीच में मानसून आता है, मानसून आता है उसके हिसाब से वो फ्रूट्स बनता है, वो मैंगोज सीजन।
0: अच्छा अच्छा,
1: उसके हिसाब से और कुछ नहीं।
0: तो फ्रूट्स के मामले में और भी कौन से फ्रूट्स उधर फेमस है?
1: जैसे आप लोग बोल सकते हो जैक फ्रूट फेमस है, वाटरमेलन फेमस है, बनाना फेमस है, मैंगोस, लीची, दीज आर ऑल फेमस, बहुत मिलते हैं।
0: तो मुझे बताइए कि यहाँ का जैसे कुंदा ज्यादा फेमस है बेलगम का, वैसे वहाँ पे क्या फेमस है? या फिर बंगाली स्वीट से फेमस है?
1: बंगाली स्वीट संदेश, डिफरेंट शेपेड संदेश मिलता है।
0: हाँ, वो क्या रहता है?
1: वो भी स्वीट्स रहता है, थोड़ा हार्ड रहता है।
0: अच्छा।
1: जैसे रसगुल्ला इज लाइक सॉफ्ट, बहुत नरम रहता है वो, बट आपका संदेश बहुत हार्ड रहता है, डिफरेंट शेपेड रहता है।
0: अच्छा।
1: चाहे वो फिश शेपेड हो या फिर वो
0: अलग अलग शेप में,
1: इवन फ्रूट के शेपेड में आता है, लाइक वो मैंगो शेपेड आया, कुछ भी।
0: किससे बनाते हो
1: वो? दही से बनाते है, दही, दूध, खीर, गुड़, चीनी, इसे सुगर से बनाते
0: हैं। आपने तो बहुत मिस किया होगा खाना उधर।
1: बहुत मिस करता हूँ। हाँ जी, डेफिनेटली। हाँ, एक चीज और बोलना चाहता हूँ कि इधर जैसे आप लोग रोटी सब्जी उसके साथ चावल भी खाते हो, हमारे उधर एक टाइम ही चावल खाते हैं।
0: अच्छा।
1: मतलब कभी कभी, मतलब चावल के साथ कभी रोटी नहीं खाते हम लोग, सिर्फ चावल ही खाते। अगर रात को मन करे तो रोटी खाएंगे या फिर मन करे तो चावल खाएंगे।
0: अच्छा।
1: ऐसे डिफरेंटली रोटी भी खाते, चावल भी खाते नहीं,
0: ऐसा नहीं खाते,
1: ऐसे नहीं खाते।
0: बहुत अच्छी बातें बताई आपने शुभोदीप, और कोलकाता के बारे में ये सब बातें सुन के और भी एक्साइटमेंट बढ़ गई अभी की, वहाँ जाके उधर का सब मार्केट।
1: आप घूम के आइए चार पांच दिन के लिए कोई भी। मैं सबको, सभी दर्शक को यही बोलना चाहता हूँ कि एक बार घूमने जाने के लिए।
0: हाँ, इतनी सारी देखने लायक जगह है उधर, तो एक बार जाके आना ही चाहिए।
1: जी,
0: बहुत अच्छा है शुभोदीप, आपने अपना कीमती समय दिया और कोलकाता के बारे में इतनी जानकारी हमारे श्रोताओं को यहाँ बैठे बैठे दे दी, उसके लिए थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू आपको, धन्यवाद।

0: खुशी।
1: तो ये था हमारा आज का विशेष भाग एक भारत श्रेष्ठ भारत। इस योजना के माध्यम से लोगों को आसानी से जोड़कर देश में एकता और सद्भाव की संस्कृति समृद्ध बनाने के मुख्य लक्ष्य को प्राप्त करना है। एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना महान व्यक्ति और स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से प्रेरणा लेकर शुरू की गई है। तो ये था हमारा आज का विशेष भाग। आपको कैसे लगा वो लिख भेजिए। हमारा पता है वेणुधोनी 90.4 KLE कनसू थर्ड फ्लोर KLE यूनिवर्सिटी JNMC कैंपस नेहरू नगर बेलगावी। हमारा फोन नंबर है 9019904904। मनीषा एक नए प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए आप सुनना न भूले वेणुधोनी 90.4 KLE कनसू। नमस्कार।
2: हम है एक एक है हम, नौ पुरुष के नौ पुत्र है हम है एक एक है हम,
3: सबका अपना
2: एक भारत।

यू ऑल। तो कैसे आप लोग, उम्मीद है मुस्कुरा ही रहे होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे शो बी रिलैक्स में, और आप सुन रहे हैं आप सभी का फेवरेट शो बी रिलैक्स ओनली ऑन वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनासूपर। दोस्तों आज हम एक बड़े ही उपयोगी और नॉलेजेबल टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिससे हमारा फ्यूचर और जनरेशंस के फ्यूचर पर भी काफी अच्छा और बड़ा इफेक्ट आ सकता है। क्लाइमेट चेंज और इकोनॉमी में भी बहुत मदद मिल सकती है, या उसको बनाने के लिए भी ये बहुत ही ज्यादा सक्षम है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं रिसाइकलिंग और वेस्ट मैनेजमेंट की। चलिए करेंगे बात आज इसी टॉपिक पर। तो सिट बैक एंड रिलैक्स एंड एंजॉय द शो। कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिएगा हमारे साथ वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनसू।

Hello and welcome back once again. You have tuned in to Venu Dhwani 90.4 KLE Kanasu और हम आज बात कर रहे हैं recycling के बारे में। दोस्तों जानते हैं सबसे पहले कि ये recycling होता क्या है। Recycling का मतलब होता है कि collection, processing and reprocessing of used material to create new ones। आपको simple शब्दों में अगर मैं बताऊं तो material को जिस प्रकार हम लोग दोबारा use कर सकते हैं, अगर कुछ चीजें खराब हो गई है उसको हम लोग reuse कर सकते हैं processing के बाद, जिससे पैसा वक्त दोनों बचता है। इसका गोल ये है कि वेस्ट को लैंड से डाइवर्ट करके यूज देम इनटू अ वैल्यूएबल रिसोर्स। कुछ कॉमन रिसाइकल मटेरियल मैं आपको बताता हूं, जैसे पेपर हो सकता है, कार्डबोर्ड हो सकते हैं, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल एंड सर्टेन टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ऑल्सो, जिनको हम लोग रीयूज कर सकते हैं। दोस्तों अब आप इसका मतलब तो समझ ही गए होंगे। कुछ और डिटेल्स देता हूं मैं पर इन सुपर हिट सॉन्ग्स के बाद, तो आप कहीं जाइएगा मत और सुनते रहिएगा मेरे साथ वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसु।

दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे शो बी रिलैक्स में, और आप सुन रहे हैं वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसू और जे आयुष के साथ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि रिसाइकल किसे कहते हैं, चलिए जानते हैं इनके रोल्स और प्रोसेस। रिसाइकल एंड वेस्ट मैनेजमेंट प्ले वाइटल रोल्स इन एड्रेसिंग द ग्लोबल एनवायरमेंटल क्राइसिस। हमेशा बढ़ती पॉपुलेशन, कंजप्शन पैटर्न जो है, जिनकी वजह से वेस्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जिससे एनवायरमेंट भी खराब हो रहा है और हमारी हेल्थ भी साथ साथ में खराब होती जा रही है। लेकिन हम अगर रिसाइकलिंग मेथड अपनाते हैं और वेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी अपनाते हैं तो हम इसके इम्पैक्ट को काफी हद तक कम कर सकते हैं। जैसे हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर पाएंगे और क्रिएट कर पाएंगे एक बहुत ही क्लीन और बेहतरीन फ्यूचर। और मैं बताता हूँ आपको, आपकी शाम को थोड़ा सा बेहतर बनाने में थोड़ा सा और योगदान दूंगा और सुनाऊंगा आपको बहुत ही जबरदस्त गाने। तो कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिएगा हमारे साथ वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसू।

दोस्तों जानते हैं रिसाइकलिंग की प्रोसेस को, तो कुछ स्टेप्स जैसे कि कलेक्शन, कलेक्शन का मतलब मैं आपको बताऊं यानी वेस्ट को या कचरे को इकट्ठा करना अलग अलग जगह से, जैसे घर से या किसी कमर्शियल प्लेस से, इंडस्ट्रीज हो सकती है, उनको लेकर कलेक्ट कर उनको सेपरेट करना, इज कॉल्ड कलेक्शन। दूसरी प्रोसेस है सॉर्टिंग, मटेरियल को सॉर्ट करना उनकी क्वालिटीज और कैटेगरीज के हिसाब से पार्ट देना। प्रोसेसिंग, मटेरियल को क्लीन करना या फिर छाट देना, उसको रॉ मटेरियल बनाने के लिए प्रोसेस करना जिससे नए मटेरियल का निर्माण हो सके या उसको हम बना सके। मैन्युफैक्चरिंग, रिसाइकल्ड मटेरियल्स को यूज करना एक नए प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, इसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। तो ये कुछ प्रोसेस मैंने आपको बताई, जानेंगे और भी कई सारी प्रोसेस के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको सुनाऊंगा कुछ सुपरहिट गाने, तो सुनते रहिए मेरे साथ यानी आरजे आयुष के साथ वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसु, हमारा शो बी रिलैक्स।

हेलो एंड वेलकम बैक। बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बात कर रहे हैं रिसाइकलिंग और वेस्ट मैनेजमेंट पर, और मैं आरजे आयुष आपके साथ हमेशा बना हुआ हूँ आपको इन्फॉर्मेशन और मनोरंजन दोनों करने के लिए। आप सुन रहे हैं वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसु। दोस्तों, हमने रिसाइकलिंग के बारे में जाना, अब थोड़ा वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में भी थोड़ा सा आपको मैं समझा देता हूँ, तो आपके दोनों पॉइंट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। वेस्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स द सिस्टमैटिक कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्पोजल एंड ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट टू मिनिमाइज द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। बहुत हद तक मिनिमाइज हो सकता है इसके कारण, जिसका एम है कि वेस्ट को या वेस्ट का जो वॉल्यूम है यानी क्वांटिटी है, कितनी बड़ी क्वांटिटी में वेस्ट है उसको थोड़ा सा कम किया जा सके, ये इसका मोटिव है। एंड विच प्रमोट्स एनवायरमेंटल फ्री डिस्पोजल प्रैक्टिसेस। चलिए, आप दोनों चीजें समझ गए हैं, लेकिन लेते हैं आप एक छोटा सा ब्रेक, तो आप कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिएगा मुझे यानी आरजे आयुष को, और बहुत सारे गाने मैं आपको सुनाने वाला हूँ जिससे आपकी शाम होने वाली है थोड़ी सी और बेहतरीन। तो सुनते रहिए हमारे साथ वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसु।

हेलो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर और आप सुन रहे हैं वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनसु। दोस्तों मैं आपको एक फ्रेज के बारे में बताता हूँ जिसका मतलब है रिड्यूस रीयूज रिसाइकल। ये तीन मेन कीज है वेस्ट मैनेजमेंट की। देखिए रिसाइकल प्रोग्राम्स जो है वो एकदम वेल डिजाइंड होना चाहिए और एक्सेसिबल होना चाहिए हर बिजनेस, हाउस होल्ड और इंस्टीट्यूशन के लिए। लोकल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी कोलैबोरेट कर सकते हैं इस चीज को स्टेबलाइज करने में या स्थापित करने में। कंपनसेटिंग ऑर्गेनिक वेस्ट भी एक क्रूशियल एस्पेक्ट है सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट का। ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे फूड स्क्रैप्स या फिर घास जिसको हम लोग छांट देते हैं या काट देते हैं, इनको हम लोग कंपोस्ट करके न्यूट्रिएंट रिच सॉइल बनाने में मदद कर सकते हैं, यानी खाद बनाने में हम लोग यूज कर सकते हैं। दोस्तों करेंगे बात पब्लिक एजुकेशन और अवेयरनेस की, कैसे हम लोग पब्लिक को अवेयर कर सकते हैं या एजुकेट कर सकते हैं इन सब के बारे में आफ्टर दिस सुपर हिट सॉन्ग्स। कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिएगा मेरे साथ ओनली ऑन वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनसु।

हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर। दोस्तों, पब्लिक एजुकेशन और अवेयरनेस कैंप्स भी बहुत जरूरी है रिसाइकलिंग और वेस्ट मैनेजमेंट को प्रमोट करने के लिए या उसको समझने के लिए। हम एक सेंस ऑफ स्पार्क जगा सकते हैं लोगों में इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का और इम्पावर कर सकते हैं इंडिविजुअल्स को, जिससे वो कोई एक्शन ले सके उस चीज पर, या कम्युनिटीज टू कैन हेल्प टू क्रिएट अ ग्रीनर फ्यूचर। स्कूल्स, कम्युनिटी सेंटर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ये भी एक बड़ा टॉपिक हो सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कैन ऑल्सो हेल्प, कैन बी यूज टू स्प्रेड द इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिसाइकलिंग एंड द वेस्ट रिडक्शन। गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मिलकर ये कैंप्स अरेंज करना चाहिए या कर सकते हैं, जो इंस्पायर कर सकेंगे लोगों को टू फोकस ऑन ऑल दीज एक्टिविटीज। दोस्तों, कई सारे लोग हर सिटीज में इन पर काम कर रहे हैं। आपने देखा ही होगा संडेज को या वीकेंड्स पर आजकल बहुत सारे वीकेंड क्लीनिंग प्रोग्राम्स होते हैं जिसका आप हिस्सा बन सकते हैं। और अब आपको सुनाते हैं कुछ धमाकेदार, चटाकेदार, एकदम हॉट एस चिली सॉन्ग्स। तो सुनते रहिए हमारे साथ वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनासू।

रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे का पहरा। ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे

लता मंगेशकर जी की आवाज़ में ये खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में, जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत, शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

हेलो हेलो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन एंड लिसनर्स ऑफ ऑल द एजेस, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे शो बी रिलैक्स में, ओनली ऑन वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनसु आरजे आयुष के साथ। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, कई सारे कैंप्स भी चल रहे हैं। अब ये आपकी जिम्मेदारी है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और अपने देश के प्रति एक फर्ज समझ कर आप इन कैंप्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आप अपने परिवार और दोस्तों को भी इंस्पायर कर सकते हैं कि अगर आप फ्री है तो चल यार थोड़ा सफाई कर लेते हैं, इस बार थोड़ा सा मदद कर देते हैं। दोस्तों, एक चेंज की शुरुआत बात करने से नहीं होती और ना ही लोगों को बदल कर होती है। चेंज की शुरुआत होती है खुद को बदल कर। तो पहले आप खुद को बदले, फिर चाहे तो दूसरों को बदले। अगर आप खुद को बदलेंगे तो चेंज की शुरुआत आपसे ही शुरू हो जाएगी। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में इतना ही। उम्मीद है आपने कुछ नया सीखा होगा और सुने होंगे कुछ जबरदस्त गाने। और आप कहीं जाइए मत, सुनते रहिए हमें, हमारे शो बी रिलैक्स को आरजे आयुष के साथ, ओनली ऑन वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनसु। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट ग्रेट इवनिंग अहेड।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे

जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और SP बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धुनी 90.4 के LE कनसूबे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

गाना है मेघारे मेघारे, लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में। अगला सॉन्ग आपके लिए जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों के बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

टूनी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है, इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चले सुनते प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

ओनली 90.4 के LE कनसूबे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है, इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

दे रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और SP बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

करते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज़ में ये खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही, इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसो और यादों के भारत में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के भारत में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धुनी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

दे रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही, इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों के बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसूबे आप ट्यून है, यादों के बारह हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है, इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

सुनते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।